0: तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आम को मिन्ना बुमंगा केर संसाय बाई सेरों फुकतान ना बुमाइंस फावटन साय ने बुमाइंस अनोटन समास निनी ना मिस एट्राम सोफा अंड्रासों रासलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते पियांस चाते वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइस ना ना रना ना या ते उटन फिट फिन ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना फोटन ने करते मोबिल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना ते ते से सेंबा सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा उटन ये वेतना मेनो तुझी सन्ना तो न तुम रखाये सिस्टी लो इस